0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है. तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
3: City FM 89.
4: Sounds different.
5: A plate that is full may not be enough. More than half of Pakistan's children have micronutrient deficiencies, affecting their cognition, growth, and future.

0: Boost your song.
1: Only on City FM 89. It's 7 p.m.
2: This time check is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
0: Coming up next.
3: Retro 89.
4: FM 89.
5: You got me going crazy.
6: Trending today.
7: Rockstar Games has officially announced a partnership with Netflix to premiere GTA 6, an extended look, on August 27, 2026. The collab marks a first-of-its-kind broadcast event to showcase the next evolution in the long-running franchise.
0: City FM 89.
8: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना
3: सिटी
6: FM
3: 89
8: शेयर्ड बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना
3: पैसे
9: खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है जैज कैश से सिर्फ 99 में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस तो देर किस बात की हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना
10: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
11: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली गैस पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना
0: City FM 89
12: Sounds different.
13: Pakistan is failing its future.
14: Every single day, 27 mothers die giving life.
13: And 675 newborns don't see their first month.
14: It's a crisis we ignore.
13: Right now, 40% of our kids under 5 are stunted.
14: Their growth, their brains held back forever. Why?
13: Poverty forcing families to buy empty calories.
14: A mother suffering from malnutrition, passing it to her child.
13: A health system that is failing our mothers.
14: And water so contaminated, kids are sick and can't even absorb the little food they get.
13: We're talking about a crisis that's costing us $17 billion a year in lost potential.
14: This isn't just a statistic. This is our future generations.
13: There is a choice. We can stay on this path and surrender an entire generation, or we change course.
14: The conversation starts here. Act for Nutrition, a conference on nutrition and stunted growth in Pakistan.
13: A Dawn Media initiative on the 2nd and 3rd of September 2026, Islamabad.
15: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English biscuit manufacturer. Supporting partners, Ministry of National Health. Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSite.
6: City FM 89.

0: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट के लिए जैस कैश है ना
1: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
0: Shared bundles, wo bhi discount par. Subscribe karna to banta hai. To bas abhi, Jazz Cash app se Jazz V5 Fantastic Bundle lagao. Aur ₹1000 ke behtareen discount se fayda uthao. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
2: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89 वी आर
3: प्लेइंग योर सॉन्ग
4: हैव यू सेव्ड आवर व्हाट्सएप नंबर येट
5: 03142898989
4: गेट इन टच ओवर व्हाट्सएप
2: सिटी एफएम 89 वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
6: A bond of a mother and child is like no other. We lose 9,800 new mothers during childbirth. With access to proper nutrition during pregnancy, we can save our hopeful mothers.
7: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media Initiative.
8: Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturer. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development. UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSite.
9: City FM 89.
10: You got me going crazy.
11: You're listening to
12: Retro 89 with Amir Nasir.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: ईजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और ईजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। ईजी पैसा डिजिटल बैंक, ईजी वाला बैंक।
3: You're listening to City FM 89.
4: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना?
1: सिटी
3: FM
1: 89
4: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना?
5: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
6: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना?
3: City FM 89, we're playing your song.
7: Everybody go.
8: City FM 89 is now live on WhatsApp.
9: It's so easy.
10: 0314-289-8989.
11: Save, text, voice note or call to get your song played.
12: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
3: City FM 89.
13: 106 out of 123. That's where Pakistan sits on the hunger index. This is more than a bad rank. Pakistan is a country struggling with malnutrition, stunting, and not to mention the highest under 5 mortality rate in our region. Only with access to proper nutrition can we flip the tide.
14: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media Initiative.
15: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English biscuit manufacturer. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSight.
16: City FM 89.
17: You got me going crazy.
1: You're listening to
18: Retro 89 with Amir Nasir.
19: That is 100% right. If you're just tuning in, this Amir Nasir on Retro 89, City FM 89 is the station. And I shall stay your host all the way to 9 p.m. So do not go anywhere if you're driving around. And if you're into that kind of music, then I suggest just extend your drive for about 70 more minutes, if that's not a problem with you. Sad news for restaurants in Singapore. Dan's Steak Restaurant is shutting down. I'll tell you why I'm talking about Dan's Steak Restaurant shutting down after 6 years of operation, citing due rising costs. It was founded 6 years back during the pandemic, from home, like a lot of food business started off, and it started off as a home-based passion project before expanding into a restaurant chain. And the only reason I'm telling you this is because Ong Rose, the owner of Dan Restaurant, which has become became an almost a Michelin star restaurant,

0: City FM 89.
1: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना। शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
2: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ ₹99 में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
4: We are
5: City FM 89.
6: You haven't blown the candles of your 5th birthday yet. However, you face a 40% risk of being stunted. That is the story of a Pakistani child. Proper nutrition for every child, every mother, for a prosperous Pakistan.
7: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media Initiative.
8: Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturer. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSite.
9: City FM 89.
7: You're listening to
10: Retro 89 with Amir Nasir.
11: That's 18 minutes past 8 o'clock. Still have lots of time on Retro 89. So I'm going to play a couple of soundtracks. And the first one I'm going to play is... do you remember a movie called A Man and a Woman? It's called Un Homme et une Femme. It was a big, big hit French movie with Anouk Aimée. Anouk Aimée. I'm forgetting... Oh, I've got the person's name. But if you listen to it, and you'll probably recognize it, this is Un Homme et une Femme. I hope you enjoy it.

0: Groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 p.m.
3: City FM 89.
2: We are playing your song.
4: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना
5: मंजिल अभी बाकी है हौसला जवान अज मजबूत और सफर रवा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की दूर अंदेश कयादत तरक्की पसंद सोच अवामी खिदमत के विजन की रहनुमाई में मसरूफ है हुकूमत सिंध ने जदीद और मुफ्त तिब्बी सहूलियात का मजबूत निजाम कायम किया SIUT SICVD JPMC NICVD के सैटेलाइट सेंटर्स गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जदीद सहूलियात दस्तियाब है जबकि सिंध इंस्टीट्यूट चाइल्ड हेल्थ न्यूरोटोलॉजी में लाखों बच्चों को इलाज फराहम किया जा रहा है SPHF दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है जिसके तहत 21 लाख घर तामीर किए जा रहे हैं तालीम के फरोग के लिए हुकूमत सिंध ने डाउ यूनिवर्सिटी जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वेमेन शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी बेगम नुसरत भुट्टो वेमेन यूनिवर्सिटी सखर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद और अरोर यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन हेरिटेज शहीद बेनजीर भुट्टो गर्ल्स कैडेट कॉलेज लाड़काना और बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स खुसूसी अफराद को बाख्तियार बनाने के लिए स्पेशल एजुकेशन बहाली हुनरमंदी और खुद मुख्तार जिंदगी के मौके को मजीद वसअत दी गई इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की रफ्तार को तेज करने के लिए सिंध हुकूमत ने जदीद शाहराहों पुलों और राबिता सड़कों का वसी जाल बिछाया शाहराहे भुट्टो कराची के सनती इलाकों बंदरगाहों और मोटरवे M9 को आपस में जोड़ रही है जबकि 141 से ज्यादा सड़कों और 825 किलोमीटर रोड नेटवर्क्स की बहाली मुकम्मल की गई, जिससे लाखों अफराद की आमदोरफ तिजारत और रोजगार को नई रफ्तार मिली जरिए खुशहाली के फरोग के लिए सिंध हुकूमत ने किसान दोस्त मंसूबों का एक जामे सिलसिला शुरू किया बेनजीर हारी कार्ड के पहले मरहले में तकरीबन 2,98,000 रजिस्टर्ड किसानों को बीज खाद जरिए अद्वियात जदीद मशीनरी पर सब्सिडी रियायती कर्जे फसल बीमा और कुदरती आफात की सूरत में माली मुआवनत फराहम की जा रही है पानी के हर खतरे को कीमती सरमाया बनाते हुए लाखों एकड़ जरई अराजी को दोबारा पैदावारी अमल से जोड़ा जा रहा है धाबजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सी पैक के तहत जदीद सनती मरकज के तौर पर तरक्की दी जा रही है खैरपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन साइट कराची नूरियाबाद बिन कासिम और दीगर सनती जोन में बुनियादी सहूलियात बेहतर बनाकर मुल्की और गैर मुल्की सरमाया कारी को फरोग दिया जा रहा है सिंध हुकूमत ने अवामी ट्रांसपोर्ट में जदीद दौर का आगाज किया रेड बस पाकिस्तान की पहली ईवी बस पिंक बस और खवातीन को मुफ्त स्कूटीज फराहम की जा रही है जो खवातीन को महफूज और बावकार सफर फराहम कर रही है तवानाई के शोबे में थरकोल मंसूबा सिंध की तरक्की का अहम संगे मील बन चुका है जहां मकामी कोयले से हजारों मेगावाट बिजली पैदा करके कौमी ग्रिड को मजबूत बनाया जा रहा है नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट घारो विंड कॉरिडोर और शमसी तवानाई के मंसूबे तवानाई के मुतबादिल जराए को फरोग दे रहे हैं ये सिर्फ मंसूबों आदाद और शुमार या तामीरात की दास्तान नहीं खुशहाली को सिंध के हर शहर हर गांव और हर खानदान तक पहुंचाने के अज़्म की रोशन अलामत है खिदमत में सबसे आगे सिंध
6: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
7: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली गैस पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना
1: City
3: FM
1: 89.
8: A bond of a mother and child is like no other. We lose 9,800 new mothers during childbirth. With access to proper nutrition during pregnancy, we can save our hopeful mothers.
9: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media Initiative.
10: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English biscuit manufacturer. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSight.
2: City FM
1: 89. You're listening to
0: Retro 89 with Amir Nasir.

0: Prolonged your song.
1: Only on City FM 89.
2: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है. तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना. शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है. तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
3: 89.
4: We're playing your song.
5: 106 out of 123. That's where Pakistan sits on the hunger index. This is more than a bad rank. Pakistan is a country struggling with malnutrition, stunting, and not to mention the highest under 5 mortality rate in our region. Only with access to proper nutrition can we flip the tide.
6: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media Initiative.
7: Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturer. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSight.
1: City FM 89.
8: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
9: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
10: A new era begins.
11: City FM 89.
1: On the dial. You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 9:30 p.m.
3: City FM 89. We're playing the song.
4: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना?
5: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना?
6: City FM 89.
7: We're playing your song.
8: You haven't blown the candles of your 5th birthday yet. However, you face a 40% risk of being stunted. That is the story of a Pakistani child. Proper nutrition for every child, every mother, for a prosperous Pakistan.
9: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media Initiative.
10: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English biscuit manufacturer. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSite.
6: City FM 89.
1: You're listening to
11: Non-Stop Hits.
12: No talk.
13: Just you
12: and the music.
13: Back to back
12: starts now.

0: will launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें. चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
3: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना.
4: सिटी एफएम
1: 89
5: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.
6: City FM 89.
7: A plate that is full may not be enough. More than half of Pakistan's children have micronutrient deficiencies affecting their cognition, growth, and future.
8: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media initiative.
9: Principal partners: Government of Khyber Pakhtunkhwa, English biscuit manufacturer. Supporting partners: Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak. Knowledge partners: International Research Force, GlobeSight.
10: You're listening to City FM 89.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 p.m.
3: City FM 89.
4: जब तमाम बिज एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना?
5: City
6: FM 89.
7: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
8: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना?
9: City FM 89, we're playing your song.
10: 106 out of 123. That's where Pakistan sits on the hunger index. This is more than a bad rank. Pakistan is a country struggling with malnutrition, stunting, and not to mention the highest under 5 mortality rate in our region. Only with access to proper nutrition can we flip the tide.
11: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media Initiative.
12: Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturer. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSight.
13: This is
14: City FM 89. We're playing your song. Yeah.
15: Culture.
16: Speak your mind.
17: Today we're talking about ghosting. Why just because someone doesn't text you back doesn't mean that you need to go off the deep end.
16: Tell it as it is.
17: Friends, and I want to talk about if they matter or if they don't.
18: What did you say?
16: And add just a little more edge to your Saturday and Sunday evenings.
17: Just the good stuff. No, I can't even say that. That's terrible. Just the fun times. It's a fun song.
16: Disclosure with Saba Bano Malik every Saturday and Sunday 5 to 7 p.m. only on City FM 89.
1: City
5: FM
1: 89.
16: You're listening to
19: Non-Stop Hits.
20: No talk.
21: Just you
20: and the music.
21: Back to back
20: starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
2: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.
4: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
5: यू हैवन्ट ब्लोन द कैंडल्स ऑफ योर 5th बर्थडे येट. हाउएवर, यू फेस अ 40% रिस्क ऑफ बीइंग स्टंटेड. That is the story of a Pakistani child. Proper nutrition for every child, every mother, for a prosperous Pakistan.
6: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media Initiative.
7: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English biscuit manufacturer. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak. Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSight.
8: City FM 89.
9: Attention, the standard commute has been decommissioned.
10: Introducing a system override for your ears.
11: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
12: Join ABD as he takes over the streets.
11: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
10: your evenings just got an upgrade.
12: The Rush Hour with ABD.
11: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
10: Tune in or get left behind.
13: City FM 89, we're playing the song.
0: You're listening to
14: Non-Stop Hits.